जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन अस्थान दियां हाजरियां भरदे होए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी सतगुर जी आप नाम जानी जानो सतगुर जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे यरुकता दे नाम दे दात बख्शिश करनी असा मनसा पूर्ण करनी हर मैदाने हर कार्ज फतेह करना सतगुर जी कारज राज करनी यात्रा

ओदरे वाहिगुरु दावे ते ओए दावे सुन ते ओदरे वाहिगुरु बिन से पाप घने रे बिन से पाप घने रे सचिया पादिचा बिन से पाप घने रे पैसे पड़े ता

सेवक जन मान पर ताख गुरु निसतारी रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम।

सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई।

सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बानु आहे बिनुदा गावे सरस बसंत कमुदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी।

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुर

बिंद के सदैया दाही जकी बटैया दे तबंदरा सदीव पाए नंगी फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रभि ने एक ज्ञान के विहीन छेन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छौन सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बटैया देत बगुला बिटाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते वड्डे ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांधरी गजैया कहे आदस फिरैया तै तो भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीडत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैल सार सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है जोगी जट्टाधारी सत्य सच्चे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पावन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पाव भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मूर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है चंद्रमात शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न भेदचारी सनत कुमार सी तपस्न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा अर विषण के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताए है मोन दी मजार किते असनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल भस भय है पीरे ओ पिगंबर किते गाने ना परत ते भूम ही ते होय के फेर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चरत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप और दिलीप कस छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दार से दिली सरद्रु जो धन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट वेश पोष दी अनेक दानी।

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई बोल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयन एक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व दुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन।

जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत

करवत सहत कित भूमि गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को फरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सीख हस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार बूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मडली पहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामंग लेखं अपेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहां बासता को फिरा कौन भेखं कहां नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न वह न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे कितने कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर।

ंग न शोकंग न साकंग परे यंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न वर्मंग न सर्मंग न साके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग

चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपं कहूँ नेह गृह कहूँ देह दोखं कहूँ औषधि रोग के शोक सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जश विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ मद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूप।

बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग ग्रहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं।

कर्ता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख।

जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग सोग नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल प्याल कट्यो न अंग अक्ष स्वरूप अखय अभंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेब जेह अलख रूप आसन अडोल जे अमित तेज अक्षय तोल जे ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक जुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोग

कहाँ रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को पृष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर

सुद्धता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय उसी सत्रप करखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी ब्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला प्रांगी भेद प्रसंगी तेज दोन

निदान कारण स्वरूप जे चक्र चरण नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजताक जल थल महीप वंदन दुरंत जेह नेत नेत निषिद्ध नु चरंत पायो न जाय जह पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निषिद्ध नु चरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करें नित संतु बार गनी मन गारे पक्ष पशु नग नाग नारा देव सर्व समय सबको प्रतपार है पोकत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरु हानि की रोज न डारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंग देव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किंसरी पदमा पद पाए आद अनंत अगाध द्वेक स्व भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनातम अबाध अगदुख अचित्र अचय है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह सबूतन देह विरक्त अगेह अच्छ है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद मापत लह है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बो बांध बचावे शत्रु अनेक जलावत गाओ तौ तन एक न लांघन पावे रखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेट न पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे जछ भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का अस्पताल रसादर जछ भुजंग सब शरण्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहारे वेद न पाए सके उन भेद को खेद है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग तिहारे याद नात अगाध अपेगत वैख जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के माल है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दीड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस न्यावे ते पति थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोह ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पछ पहुचत ताहि जिड की चिंगार पहले ही सुनियत है। कित्ते इंद्र द्वार कित्ते ब्रह्मा मुख चार कित्ते कृष्णा अवतार कित्ते राम कहियत है। कित्ते ससरासी कित्ते सूरज प्रकाशी कित्ते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कित्ते महादीन कित्ते व्यासे प्रवीण कित्ते कुमेर कुलीन कित्ते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाई न पार पै अपार कै बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी कै के मानी है। जंत्र हूँ जात जा की बाप हूँ मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कै के जानी है। तेज हुंकतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की सान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं के रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के भूहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभिव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को भरण है गया पदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारा वार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब विद्या।

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिंह रूम ही रसी हो सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी बलाऊ गढ़ रूपा कैसी राम पूर सूरा सी सुरंगा वादनी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदगढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कंसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नि के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्र गिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बकरी कंधारी गोर कखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजे

0: सिमरन करना कीता, दासा भाव धारण कीता, यह भगती नहीं तो और की है प्यारे। सच जानो कि यह जो कोई तुसी कर रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि तुसी भगती कर रहे हो। सो इस तरह भगती दे जड़े हन कर्म जड़े हन, यह तरह तरह की भगती जड़ी है जिन्हों नौधा भगती किया जाता है। यह नौधा भगती करने वाले महापुरख हैं बाबा कालू जी।
1: जप तप व्रत नेम समदाय,
0: ये तो बाद जप करना तप करना व्रत धारण करने नेम आदक करना, इस तरह करदिया करदिया ना बहुत जन्म बिता, जह जन्म बिताए अपना सारा जीवन जेड़ा बाबा कालू जी ने बतीत करना कीता। ते इना दे मन दे विच कई जन्मां दी ए इच्छा बहुत ज्यादी प्रबल सी, ते ओ अपने मन दे विच एही उन्होंने इच्छा रखनी कीती के साक्षात भगवान वाहिगुरु जी विष्णु का स्वरूप जो है ते ओ मेरे घर दे विच वाहिगुरु जी जो है सरगुण स्वरूप दे विच आ करके मेरे घर दे विच मेरे सपुत्र बन के ओ अवतार धारण करना। इस तरह प्यारियो इन्होंने मन दे विच बहुत संकल्प विकल्प करना कीता, मन दे विच बहुत तरह दे संकल्प कर दे के वाहिगुरु जी ओ कृपा करो मेरे घर दे विच पुत्र रूप दे विच हो करके आप जी प्रगट होना करो। निर्गुण स्वरूपता जेड़ा है अदिख है, ओनू कोई अपा वेख नहीं सकते हाँ, सरगुण स्वरूप नू अपा जान सकते हाँ, लेकिन वह सरगुण स्वरूप जो मनुखा योनी दे विच आप जी दे जो सरगुण स्वरूप आउंदे हन ते जदों भी ये आप जी प्रगट होना मेरे घर दे विच आप जी सरगुण स्वरूप धारण करके प्रगट होना करो।
1: भगत अधीन रिज है गुण अल्पा,
0: ते बार बार यही बेनती कर दे के देखो आप ता भगतां दे अधीन हो, भगत अधीन रिज है गुण अल्पा, के जिते अंदर थोड़े भी गुण होना ते वाहिगुरु जी जो हन ओदे थोड़े बाड़े भी गुणा नू वेख करके प्रसन्न हो जांदे हन, क्योंकि ओ प्यारियो दयालय है करुणावान है दया दा सागर है, क्योंकि जिदे मन दे विच दया हुंदी है सच जानो प्यारियो ओ बाड़े गुणा नू भी नहीं वेखदे। तुहाडा जिहड़ा एक आधा भी गुण नजर आ गया ते वाहिगुरु जी तुहाडे उत्ते बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाणगे, बहुत ज्यादा महाराज जी दे मन दे विच आनंद आ जाना है।
1: जे मुझ लखै दीन गुण नाही,
0: ते नाल जे मुझ लखै दीन, जे मैनू आप जी वेखदे हो के भाई ए ता दीनहीन है एदे अंदर एक भी गुण नहीं है, ते इस तरह बाबा कालू जी बेनती करदे हन के वाहिगुरु जी ओ आप जी ने जिस तरह के कहा जांदा सात संगत जी विष्णु भगवान जी, एदा संबंध जेड़ा ना विष्णु भगवान दे नाल है। विष्णु भगवान ने जेड़े 24 अवतारा नू धारण करना कीता, वह 24 अवतारा दे विच प्यारियो जानवरां दे रूप दे विच भी वह प्रगट होए हन, जानवरां दे रूप दे विच भी एदा जिक्र गुरबाणी दे विच भी सानू प्राप्त हुंदा है। जदो आपां पाठ करदे ना जरम करम मच्छ कच्छ हुओ बैरा, जमुना कै केल खेल खेलियो जिन जिन जियो करके, के एदा मतलब के वाहिगुरु जियो आप जी ने के केड़े केड़े अवतार धारण करने कीते। एक सब तो पहला अवतार ही सात संगत जी विष्णु जी का अवतार जेड़ा है मच्छ अवतार, आप पुन धरा आपन जाप आप मोह करा। किया जांदा कि जदों सारी धरती जेड़ी जदों डुब रही सी ते उस वेले जिन्हों जल प्रलव बोलते हैं, एदा जिक्र सात संगत जी इस्लामिक ग्रंथा दे विच भी आया है ते हिंदू पुराण जेड़े पुराण मैथोलॉजी जेड़ी है उहदे विच भी एदा जिक्र मिलदा है कि एक बारी जल दी प्रलव आ गई, हर पासे जल ही जल, बहुत ज्यादा पानी ही पानी हो गया, ते उस वेले के जेड़े हन जिन्ने महापुरख सतपुरख जेड़े हन उन्होंने वेख्या के भाई जे अपा डुब गए सब तबाह हो जाएगा नाश हो जाएगा, ते जेड़े नीवे पासे रहिंदे सन जिथे पानी भर रहा सी उन्होंने की कीता बहुत वड्डा जहाज जेड़ा है तैयार करना कीता, बहुत वड्डा जहाज तैयार करके उहदे विच ओ चढ़ गए ते नाल प्यारियो जो भी दुर्लभ ग्रंथ सी और भी कई जड़े प्रजातियां दे जीव जंत जड़े हन उन्हां नूं भी बेड़ियां दे विच जहाजां दे विच उन्हां ने लद लिया चढ़ा लिया। ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਵਕਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਫਰੀ ਸੂਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਨੀ ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਯਪ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਬਤ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਧਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘਾ ਅਵਤਾਰੰ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ।
1: ਕਮਠੀ ਆਦਿਕ ਬੇਮਤ ਕੁਜਾਤੀ
0: ਤੇ ਕਮਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।
1: ਜਨਮ ਲੀਨ ਜਗ
0: ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲ

पृच्छत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा।

मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान कर।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत नेत। स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो यह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत की ये फल हुई आद ब्याज छ सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन।

जाना ही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटों, जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे।

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊची मत पत का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फते, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दुदार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन दार मेले बोलो जी। थम जी, ननकाणी जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हर मंदिर दिल्ली में, शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। हम जी, ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में, शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। भगौड़ साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक झीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवां जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन दार मेले बोलो जी। सर्व समूहालसे जी को नगारिया, निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। बोलो जी, बोलो बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द वाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री वाहे गुरु साहेब जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी,

0: श्लोक महला पहला श्लोक
1: बड़े बड़े आए जा बड़ा नाम बड़े बड़े आए सब सुनिया ना बड़े बड़े जाने जस्ता सुनिया ना बड़े बड़े जाने ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े बुद्ध ना बड़े बड़े बुद्ध सुखा बड़े बड़े ब

कहे कि लाज लाज कहे कि लाज लाज गोविंद दास तुहार सतनाम श्री वाहे गुरु श्री साहिब जी दोहरा दोहरा भजी सहन जब

किया कमाना अल मल खाय सिर शाय पाए मोर कंद पद गवाए विण ना वे किस्ता न पाए रे बिबाने मुड़ी मसाने अंद न जाने फिर पस्ताने सतगुरु बेटे सुसुख।

0: कुल राजा कुल प्रजा कुल सब संसार कुल मंडप कुल माड़ी कुल बैसनहार कुल सोना कुल रूपा कुल पननहार कुल काया कुल कपड़ कुल रूपपार कुल मिया कुल विवेका फोयका कुल कुड़े निहलका विसरा करतार किसनार किचे दोस्ती सब जग चरनहार कुल मिठा कुल माख्यों कुल डोबे पूर नानक खान बेनती तुलवाज कुल कुल महला पहला
1: सचता पर जन जारी दिस चाहो कूड़ के मल उतरे तन करे हज्जा तो हो।

पहला सच काल कुरुण ते अकल काल खेताल बियो विपत लगे अपने गोयदाल जे खोयता गुरु तीर्थ नान पाए बारा गुरु रंगनास पै विच खमचाई सरपातम हो नान भक्ति जे रपै कुड़े।

0: प्रमुर्तार ज्ञानन शिवाज बाबे रूप सिंगा ऊचे कु कहवा दा कावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकवत तुझे संजय कर पियाट धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वे जुगत ना जाने छट पे करबार
1: सब पुरा।

0: अंदर गया अंदर पाइए तगना तू तस्पुत महला पहला।
1: तगना नारे भल गए तू पवे निताड़े तगना पेरे तगना हाथे तगना जेवा तगना खे वेद गाया पे वत बढ़ता गेवरा गतले पाड़ कर भी।